नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण देहे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धबल आकाश नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाथ सुने जोग जोग तन भेद सुने सासत सिमरत वेद सुने सत संतोष ज्ञान सुने अठ सठ का स्नान नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश।

यको बुझे होवे सचियार तबले उपर किता पार जी जात रंगा के नाव सबना लिखया बड़ी कलाम केता तान सवालियो रूप केती दात जाने कौन कूत कुदरत कवन कहा बेचार वारिया ना जावा एक बार असांख जाप असांख पाओ असांख पूजा असांख तप ताओ असांख भगत गुण ज्ञान विचार असांख सती असांख दातार असांख सूर मोह पक्षार

0: कलत रंग है अपेद है अपंग है अजीज जल निवास है अग्नि मल खराज है।
1: निर्गत स्वरूप है तेरे मुक्त विभूत है प्रभुत प्रभ है सुजुक्त सुधा है।
0: सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है।
1: समस्त सलम है सदैव लय काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है।
0: ओंगाद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
1: त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगाध दे सो पंग सर्पागे सो सर्वा अनुरागे।
0: भुक्त स्वरूप है अशिज है अशुद्ध है के नरकन पर नास है पृथ्वी पर वास है।

0: सर्वं ज्ञाता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
1: रसावल शांत वै प्रसाद
0: नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते
0: अनंगी अनामे निर्भंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते
0: निरसाकं सरीक है हम तो अमीक है सदैविंग प्रभा है अजय है अजा है
1: भगवती शांत व प्रसाद
0: के जहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है
1: के साहेब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
0: के रोजी दहिंद है के राज करहिंद है करीम उल कमाल है के हुसनुल जमाल है
1: गरीब मलक हराज है गरीब निवाज है हरी फल शिकान है हरा फल फिकान है
0: तिलंकं प्रणास है समस्तल निवास है अगंजो गनीम है रजाय कर रहीम है
1: समस्तल जुबा है के साहिब किरा है के नरकन प्रणास है वस्तल निवास है
0: के सर्व गवन है हमेशुल रवन है तमामल तमीज है समस्त

0: धनी त्रित है।
1: अमृतेश्वर है परमेश्वर है, कृता कृत है अमृता अमृत है,
0: अजम्बा कृत है अमृता अमृत है, नर नायक है खल खायक है,
1: वैश्वंबर है करुणालय है, नृप नायक है सर्पायक है,
0: पंजन है यार गंजन है, रिपतापन है जप जापन है,
1: अकलांकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हरता हर है,
0: परमात्म है सर्वात्म है, आत्म बसे जस के जसे पुचांग पर्याति शत।
1: नमो सूर्य सूर्य।

0: ऐसा काम भूले ना कि चरित अंत पछोताइया।
1: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले।
0: कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।

0: मानव साए।
1: गुरमुख जिसनु आप करे सो हो वह एक स्यो लिवलाए।
0: कहे नानक आप करता हापे हुकम बचाए।
1: सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दे तत्ते सार ना जानी।
0: तत्ते सार ना जानी गुरु वाजो तत्ते सार ना जानी।
1: तही गुण संसार भ्रम सुता सुतिया रहन विहानी।
0: गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी।
1: कह नानक सो तत पाए जिसनु अनदिन हाली भी लागे जागत रहन विहानी।
0: माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये।
1: मनो क्यों विसारिये वरदाता जे अगन में आहार पहुंचावाए।
0: उसनु क्यों कोई न सकी जिसनु अपनी लिव लावे।
1: अपनी लिवा पे लाए गुरमुख दास संभालिये।
0: कहे नानक वरदाता सो क्यों मनो विसारिये।
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
0: माया अगन सब एको जेही करते खेल रचाया।
1: जहाँ तुस पाना तह जमया परवार पला पाया।
0: शुरकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया।
1: हे माया डित हर विसरे मोह उपजे पौ दूजा लाया।
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनि विचे माया पाया।
1: हर आप अमोलक है मोल ना पाया जाए।
0: मोल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक बिल लाए।
1: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु सिर सौंपिए विचों आप जाए।
0: जिसा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।
1: हर आप अमोलक है भगत ना के नानका जिन हर पल्ले पाए।
0: आरास मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा सतगुर ते

0: का हर एक है, हर बिन अवर ना कोई।
1: कहे नानके नेत्र अंध से, सतगुर मिलिए देव दृष्ट होई।
0: हे सरणो मेरे हो, सचे सुनै नो पठाए।
1: सचे सुनै नो पठाए, श्री लाए सुनो सत बाणी।

पावन लागे। पार ब्रह्म सनाए क्यों गर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पाए सतगुर पूरा भेटिया जन बंत बनाई। राम नाम औख जे काले बलाई, राख लिए रखना छा व्याध बताई।

गुरु प्यारी सत्संग जी सच्चे पातशाह जी ने जो अमृत वेले सानू हुक्म बख्शिश कीता है तलंग राग दे विच सच्चे पातशाह गुरु नानक पातशाह जी घर तीजे दे विच इस नू गाउण दी हदायत करदे ने। सच्चे पातशाह हुक्म करदे ने एक ओंकार सत गुर प्रसाद परमेश्वर एक है मिलदा गुरु की कृपा दे नाल है उसकी कृपा तो बिना आप उसनू नहीं पा सकते।

जय प्रसाद तुझ सब को मान मुख पाको जस वचन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दरगह मन पावे नानक पासे थी कर जावे। जय प्रसाद रो कंचन दे लीला उर्स राम सुने जय प्रसाद तेरा ओला रहता मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सकल छिद्र ठाके मन सरनी पा ठाकुर प्रभु ताके। जय प्रसाद तुझ को न पूछे मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे। जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकि भगत करे। जय प्रसाद भुखन पहरी जय मन तिस सिमरत को आस पीले। जय प्रसाद सुहस्त सुवारी मन तिस प्रभ को कबू न विसारी। जय प्रसाद बाग मिलक धना राख पोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत सेते आई ते सेते आए। जय कल कहीं हाँ हाँ नानक तेरी रखे। जय प्रसाद करे पुन बहु दान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू चार बिहारी जिस प्रभ को साथ साथ तारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा नूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने करुणा जय प्रसाद पेखे विस्मार। जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे वसना। जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फल हे। जय प्रसाद परमगत जय प्रसाद परमगत पावे। जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग और खत लागो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिज प्रभ को मूला मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ दुता को जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपे जपे सो नाउ आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विकास। प्रभु सो प्रसन्न वसे मन सोए प्रभ दया ते मात उत्तम हुए सर्व निधान प्रभ तेरी माया। आपो किछु न किनु लया जित जित लावो तित लगे हरनाथ नानक इनकै कछु न हार श्लोक। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साधना की अचरज कथा अष्टपदी। साधक संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटे भान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान साधक संग बूझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नवेरा। साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक उपर जतन साधक महिमा वरने कौन पुराणी नानक साधक की शोभा परम है सुमाने। साधक संग गोचर मिले साधक संग सदा प्रफुल है साधक संग अवे बस पुंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब कीरेन साधक संग मनोहर वैन। साधक संग नाकत हुतावै सत्संग सिद्धमान पावै साधक संग माया थे भिन्न सत्संग नानक प्रभु सो प्रसन्न सत्संग दुश्मन सामी साधु का संग मां पुनीत। सत्संग किस्यो नाही बैर साधक संग न बिघा पैर साधक संग नाही कुमंदा सत्संग जाने परमानंदा साधक संग नाही हों ताप। साधक संग तजे सब आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बन आई। साधक संग ना कब हुतावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग वस्ता गोचर लह साधु कै संग जर सह साध कै संग बथे थान उच्चह साधु कै संग महल पहुँचे साध कै संग दृढ़े सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारे साध संग साधन मेरे कुटुंब निस्तार है। साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप लायन साध संग मृत गुण गायन साध कै संग सरब थान गाम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कछ घाल दर्शन भेट होत निहाल साध कै संग कलुकत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछड़त हर मेला जो इच्छे सोई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध दुबसै नानक उदरे साध सुनत है साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ साध के संग नमन ते बिसरे साध संग सरपन निस्तर साध के संग लगे पर मीठा साधु के संग घट घट डीठा साध संग पाए आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेदना जाने देता सुने देता बखयाने साध की उम्मत है गुण ते दूर साध की उम्मा रही भरपूर है। साध की शोभा का नाही अंत साधु की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचे उची साध की शोभा मूर्ति मूर्ति साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्राप्त भाई श्लोक है।
मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख एक सुबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञान हृदय निर्लेप जैसे जल मैं कमल लेप ब्रह्म ज्ञान हृदय निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञान के ऋण समान जैसे राय रंग लग तुलपवान ब्रह्म ज्ञान के तीर देख जम शुद्ध खोदे को चंद्र देप ब्रह्म ज्ञानी का गुना नानक ज्यो पावक सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए परंगास जैसे तारू प्रयाकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी होते उच्चा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी छे जन भय नानक जिन प्रभु आप करे ब्रह्म ज्ञानी सकल किरी नाथ रस ब्रह्म ज्ञानी

कलेष्ट पदी जिसका अंतर राज मान सो नरक पाती हो सो आन जो जाने मैं जो गुणवंत सो तविष्टा का जंत आपस को करवंत कहावे जन्म मरे बोजोन परमावे धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीब वसावे नानकियां मुक्त आगे सुख पावे धनवंता हो कर करवावे तन समान कर संग न जावे बोलस कर मन को पल करे आस पल पितरता का होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसुमंत किसे न पते आप अंकारी तर्म रहत करे खुवारी गुरु प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दरगे प्रवान कोट कर्म करे उतारे श्रम पावे सगले बिरथारे अंक तपस्या करे अंकार नरक सुरुख फिर हुरे अवतारे अणु जतन करे आत्मनु द्रवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निपुण आवे सर्व गिरी जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछोए तब सुखो सुख नाही कोए जब जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जुन मैं फिरता जब तारे को बैरी मी तब लग ने चलना ही चीत जब लग मुह मगन संगमाए तब लग तरम दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे ला कुड़ता वे तृप्त न आवे माया पाछ पावे अणक भोग विख्या की करे न तृप्त आवे खब खम रे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ विथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख है बड़फा

जो कुछ किन सो अपने रंग सब ते दूर सब के संग बुझ देखे कर विवेक अपै कपै ने मरण बिन से आवण जाए नानक सदी रस।

सिमर सिमर सिमर प्रासोय नानक बिघ्न लागे कोय उस्तत मन में करनकार कर मन मेरे सद व्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सास लकड़ जी नैनो बेग ठाकुर का रंग सा संग बिन से सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिठे पाव जी पिय बिंद कर हर कर्म सुन हर कथा हर दर के नान कुजल मथा बड़ भागी ते जन जग माए सदा सार के गुण गाए राम नाम जो करे विचार सेतनवंत गिणी संसार मन तन मुख बुलैर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक पछानित उत की सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपने आप सूझे तिसकी जानो तृष्णा बूझे सत्संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्योहार जाने अन दिन कीर्तन को विखिया अन किस्त मैं सोई निर्वाण एक प्रतिजन की आसा तिसकी कटिए जम की।

कृपा करे सो सेव को किस्ते डरे जैसा सा तैसा दिष्टा अपने कार्य में आप समाया सोध सोध सोध सीजिया गुरु प्रसाद तसा बुझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सो ये सोल न कि जन्मे नक्ष मरे आपन चलते आप ही करे आवन जावन दिष्ट अंदिष्ट आज्ञा कारी तारी सब सृष्टि आपे आप सगल में आपे अनक जुग द्रहिता भूता अवनाशी नाही किज खंड तारन तार ब्रह्मांडल के प्रताप आप जपाय तनाणु जाप जिन प्रभ जाता सो सुभावंत सगल संसार उद्र तिन मंत प्रभु के सेव सब उदाहरण प्रभु के सेव दूर सार आपे मेले कृपाल गुरु का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिनो कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पाप विश्राम नानक तिन पुरु को तुम कर मान जो कुछ करे सो प्रभ के रंग सदा सब से हर संग सह सुभाय होए सो होए करणे हर पछाणे सोए प्रभु का किया जड़ मीर लगन जैसा सा तैसा दिष्टान जिस तेव जित समाय समाय सुखन दान हूं बनया है आप सुखवा दिनो मानू नानक प्रभु जने को जान सलोक

जो मंदिर को तम तम तो गुर का शब्द मणे स्तंभ मन जो पाखा नाव चढ़तरे प्राणी गुर चन लक्त निस्तरे जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन दीक मनोविकास जो माव जन्म मार पावे तो साधु संगल ज्योत घुटावे तिन संतन के बाँचो तूर नानी की आलोचा पूर मान मूर का बिलाए प्रोड़िक गल के अपाई दुख सुख प्राप्त देवन हारे और त्याग तू देश तार जो कुछ करे सो सुख मान भूला काए फिरे जान कौन वास्ता इतर संग लपट रस लो तंग राम नाम जब हृदय माए नानक पासे ती कर जाए जिस वकर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान ले मन मोड़ राम नाम हृदय में तोल लात के संत संग चाले और त्याग किया दिन जाल तन तन कह सब को है मुकुज लड़ कह सोए इव पार विरला पार नानक ताके सद बलहार चरण साध के तो पियर साधु अपना जियो साधु धूर कुर स्नान साधु प्रजाय कुरबान सास ओढ़ भागी पाई सास संगर कीर्तन गाय भगनते साधु राखे हर गुण गाय पुत्र चाखे उठ गए संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृत को जीवालन हार भूखे को देव ते आधार सर्व दान जाके दृष्टि माए प्रोली के कर लै ना पाए सब की तिस्का करने जोग तिस्में दूसर हो अन होग जब जन सदा सदा दिन दैनी सब ते निर्मले करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सो जन निर्मल थी जाके मन गुर की भरती ते

सुपुरुषानुस्पदि अविनाशी ब्रह्म मेरा खमानु की तू प्रीत्याग तिस्ते प्रेणी किस को शरण रंतरे को सोय आपे विनय पेदाना गैर गंभीर गहिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपाण दान दयाल बख्शान दे सात्री की चरणी पाओ नानक की मुनि अंदा मनसा पूर्ण शरण जोग जो कृपाया सोई हो हरण पर नेत्र होर तिसका मंत्र जाने होर अंदर मंगल सजा के सर्व तुगनी करता के राज में राज जोग में जो गीता में तभी सर्व कृष्ण में भोगी त्याय त्याय भक्त सुख पाए नानक तिस प्रकार का नियंत्रण पाए जाकी लीला की मत नाय सकल देव हरे भगाए पिता के जन्म के जाने पूर सकल प्रोय अपने सोत सुमत के अंत अंजन दया जनदास नाम ते आवे सह तय गुण मैं जाको परमाय जन्म रे फिर आवे जाय ऊच नीच दिस के स्थान जैसा जन आवे तैसा

ही फिर जापस भाई जब अकार किसी ने दृष्टि तब पापन तब कहते होता जब था ऐसा अपन सुन समाता बैर ब्रोक संकमात जब इसका वरण चैन न जावते तब हर सौकोक से व्याप जब अपने आप पार्वन तब हो गए उद्वाल प्रमे अपन के लिए आवर्ती जा नानी करणे हरण दुजा

नमस्पति पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म एक साथ साथ सिमरो गोविंद मंत्री त्रैचंद आसनंत्या गोत्रांग संजना की तुर मन मांगे आप छोड़ बेनती करो सासंग यगन सागर तर हरतन की बरड़े भंडार नान गुरु पर नमस्कार खेम कुशल साजन सासंग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद मृत रस भी चित चित्व नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल तुम उदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिम सिमरनाम बारंबार नानक जी कहे धार उत्तम सलोक साध के वचन अमली कला लिरतन सुनत कमावते हो तो दार अवतर लोक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय शब्द ना तुम अजय सुनसुनन करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल मात के माथे नानक गुजरे तिनके साथ शरण योग अनुसार नहीं आए कर कृपा प्रया मिलाए मिटके बैर पै सब रेण अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होय सेवक की सेव आल जिन जाल लुकार तरह ते राम नाम सुन सुना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक ने भी के हमारी प्रभु की सुख रसन भी सावधान का कर जी सुखनी साहिब कुंभ के नाम जिस मन बस जोत निधान सर्व इच्छाता की पूर्ण होए प्रधान पुर कुल सल होए सब तो इस पाए स्थान बहुण होए हम जान हर तन काट चले इन सोए नानक से प्राप्त होए हेम शांत रिद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्वता सिद्ध विद्या तप जोग प्राप्त ज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम संधान चार पदार्थ कुण प्रगा सब के मसकुल देवदास सुंदर चतुर तत् गभेता समदर्शी एक दिष्टेता फल तिस जन के मुख बने गुरु नानक नाम वचन मन सुने ਇਹ ਹੁਣ ਧੰਨ ਚ ਪੇ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰ ਸਾਹ ਸਰਵੇ ਦੁਖਾਣੀ ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੇ ਮਨ ਸਰਾਮ ਕੋਟ ਪਰਾ ਸਾਹ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭਾਏ ਸਾਹ ਸਰਨਾਨ ਤੇ ਆ ਜਿਸ ਮਨ ਸੇ ਸੁਣ ਲਾਇ ਪਰੇ ਤਿਸ ਦਿਨ ਆਵਿਆ ਪਾਚੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮੈਂ ਸਮਾਣੀ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਪੈ ਪਰਮੋ साध नाम निर्मलता की करम सब ते उजता की शोभा बणी नानक एह गुण नाम सुख मणि दुख रोग बिन से पै भरम साध नाम निर्मलता की करम